अंदर का दम रखा, सबसे विदार्थ करा सबका, चली जाए यहाँ पे, क्या उस मुझको के पास इसी बात